सुप्रभात अंबाला, स्वागत है आप सभी का आज के प्रसारण में। आज है 10 मई 2026 रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर।

लोग बुराई की तरफ हमेशा उत्साहित हैं, लेकिन सत्य की तरफ आलस वाले आंख चुराने वाले हैं। निंदा बखीली में चाहे सारा दिन बीत जाए, लेकिन सत्संग की चार घड़ियों के लिए इंसान के पास लाखों बहा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आए हैं गांव तेजा मोड़ी में और हमारे साथ यहां पर कई सारे गांव के रहने वाले हैं, वो बैठे हैं और हमारे साथ सरपंच जी भी है। और खास करके यहां पर हम आए हैं, हमारा इस गांव से संपर्क जब हुआ तो यहां इस गांव के एक बहुत ही हर दिल अजीज व्यक्ति है बंशीलाल संधु जी, उनसे हम मिले और उनसे हमने आग्रह किया कि हम आपके गांव में आना चाहते हैं। तो आज हम इस गांव में आए हैं तो बहुत सारी बातें हम इनसे करेंगे, जितने भी लोग आए हैं उन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले जो गांव के मुखिया होते हैं, जिनको गांव के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो गांव की उन्नति के बारे में जानते हैं, अगर कोई गांव में कमी है उसके बारे में जानते हैं, तो हमारी कोशिश है रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम सरकार तक और अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाएं। अगर उन्नति हुई है तो वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है, अगर कोई कमी है वो भी हमें सरकार तक पहुंचानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ के सरपंच जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें ताकि लोग ये जाने कि हम किन से रूबरू हैं।
1: पार्थ जी, पहले तो मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सरपंच गांव मौड़ी जी, और हमारी पंचायत दो गांव की पंचायत है, एक गोविंदगढ़ है जी, एक मौड़ी, वहां से मैं सरपंच हूं
0: जी।
1: और आप जो भी हमको गांव के बारे में पूछेंगे वो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं।
0: सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी गांव में जाते हैं तो हम सरपंच जी से इसलिए सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि उनको गांव के बारे में सारी जानकारी रहती है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप अपने गांव के बारे में और आसपास के जो आपके गांव है, अपने लोग हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं।
1: मेरे गांव में जी बहुत पुराना गांव है जी मेरा
0: जी,
1: और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, आपस में मिलवर्तन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ऐतिहासिक गांव होने के कारण सभी जातियों के लोग रहते हैं और जिनका आपस में बहुत ही अच्छा मिलवर्तन है और सभी एकता से और बिल्कुल किसी भी पक्षपात के बगैर रहते हैं और अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है।
0: तो आपकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव की उन्नति होनी चाहिए। उन्नति में हम कई सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे गाँव में सड़कें, गाँव में पानी की सुविधा। तो क्या आपके गांव में जो सड़कें हैं उनकी रखरखाव और जो ज़रूरतें हैं वो सरकार पूरी करती है, या अगर उसमें कोई कमी है आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी बात को और आपके गांव वालों की बात को सरकार तक पहुंचा सकें।
1: मेरे गांव में जी कम से कम भी 4 मेरे गांव से 7-8 सड़कें लगती हैं
0: जी,
1: सबकी हालत ठीक है तकरीबन
0: जी।
1: लेकिन एक थोड़ा उन्नति की बात ऐसे है जी, गांव में जो गोहर रास्ते हैं वो रास्ते कच्चे हैं और उनको पक्का करवाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी हैं उनको सबके पास अपना जो भी लिखित रूप में रेजुलेशन पंचायत का डाल का सबको पहुंचा दिया है कि उनको पक्का किया जाए, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जैसे डेरे हैं वो लोग रहते हैं, उनको आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। गोहर रास्ते मेरे गांव के तकरीबन सारे ही कच्चे हैं और उनको पक्का करवाया जाए, ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ।
0: जब आप सरकार से कोई चीज़ मांग लेते हैं तो मुझे आशा है कि वो उन बातों पर ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो सरकार है उसमें जो सरपंच है गाँव का उसके पास बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं। कम से कम अगर सरपंच अपने गांव की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, आपके जो टीम है पंच और बाकी जो लोग हैं या गांव के लोग हैं उनकी तरफ से आप कोई रेजोल्यूशन या कोई प्रार्थना पत्र आप सरकार को देते हैं तो वो उस पर काम करते हैं समय समय पर?
1: सभी बहुत अच्छे तरीके से काम होता है जी, सभी पंच अच्छे तरीके से भी काम करते हैं, लेकिन जो सरकारी काम है उनमें होने में बहुत देरी लग जाती है। सरकारी काम है ना, जो जैसे हम सोचते हैं अभी चलो अब रेजुलेशन दे दिया, शायद उसको होते होते बहुत टाइम लग जाता
0: है, बहुत टाइम लग जाता है।
1: मैंने बढ़ने के बाद, सरपंच बनने के बाद एक रेजुलेशन दिया था जी, जिसमें मेरे गांव में बहुत अच्छे लड़के प्लेयर हैं और मैंने अपने गांव में स्टेडियम बनवाने के लिए एक रेजुलेशन डाल के वो एप्लीकेशन दी थी, जिसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और उसमें मेरे गांव के अंदर एक साल के अंदर 2-3 बारी टूर्नामेंट भी करवाई जाती है, जो कि एक हमारा बहुत ही पुराना ऐतिहासिक मेला है कुश्ती दंगल का, वो होता है। हमारे गांव को एक स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी, बच्चों को यानी वर्जिश करने के लिए भी अम्बाला जो हमारे से 20-22 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ पर जाना पड़ता है, और स्टेडियम की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है। मेरे गांव की एक मेन डिमांड यही है अभी, स्टेडियम और गोहर रास्ते जो कच्चे हैं उनको पक्का किया।
0: आपने बहुत अच्छी बात की, आपने खिलाड़ियों की बात की, चाहे वो कुश्ती का हो या कबड्डी का हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे युवा खेलों के साथ जुड़ते हैं तो वो कोई अन्य गलत रास्तों पर नहीं चल पाते हैं। तो ये आपकी पहल बहुत अच्छी है, और जिस पहल पर आप चले हैं आपके सारे गांव वालों का साथ है, तो मुझे पूरी आशा है कि सरकार भी उस पर ध्यान दे और आने वाले दिनों में उसकी जो भरपाई है, ज़रूरत है, वो पूरी करें। आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ गाँव के बारे में, जो साफ सफाई है, इसका क्या साधन है यहाँ पे, पहला। दूसरा, क्या नल से जल हर घर में आता है या अभी भी वो पुरानी प्रथा है, हमारी जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत दूर से पानी अपने घरों में लाते हैं, उसके बारे में आप बताइए।
1: हमारे गांव में जी 2 बोर हैं जी,
0: जी,
1: और सबके घर में पानी पहुंच रहा है
0: जी, नल से जल,
1: नल से जल
0: जी।
1: और एक बोर का और रेगुलेशन तय कर दिया हुआ जी, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है जी, गाँव के बीच में से थोड़ी ऊंचाई है और साइड में नीचा है, तो साइड में पानी जाए, यहाँ गांव के बीच में पानी जाने में थोड़ी दिक्कत हुआ, इसलिए एक बोर
0: और उस इलाके के लिए करा जाए।
1: हाँ जी, उस इलाके के लिए एक बोर और लगवाया जाए, एक नलकूप यानी पानी पहुंचाने के लिए, उसका मैंने रेजुलेशन डाल के दे रखा है।
0: साफ सफाई के साथ हमारा जो व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखना, जिसको हम अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, पर्सनल हाइजीन कहते हैं, उसके बारे में लोग कितने जागरूक है। जैसे हमने खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमने हाथ धोने हैं, इसके बारे में कितनी जागरूकता है गाँव में, और खास करके जो हमारी महिलाएं हैं उनका पर्सनल हाइजीन, उसके बारे में आप अगर कुछ बता सकते हैं तो।
1: भारत जी, पहले तो लोग अनपढ़ होते थे
0: जी,
1: लेकिन आज गाँव में लोग बहुत जागरूक है
0: जी,
1: और बहुत पढ़े लिखे हैं, और आप तो साबुन से कह रहे हैं जी, तो शैम्पू आगे हाथ तो
2: जी,
1: तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो गाँव में सबके घर हैं जी, और कोई ऐसी बात नहीं है जी, बड़ी साफ सफाई है और हरेक बंदा बड़ी साफ सफाई के साथ रह रहा जी। तो शैम्पू के
0: सरपंच जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव से बनता है, और अगर गांव तरक्की करता है, गांव की सोच समझ अच्छी होती है, तो उसी में हमारे देश की तरक्की हो रही है और दिख भी रही है। मुझे खुशी है कि मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि इस समय मैं गांव तेजा मोड़ी में हूँ, और जब हम यहाँ अम्बाला शहर से होते हुए आए और पूरे गाँव तक पहुँचे में, इवन इस डेरे तक जहाँ पर हम बैठे हैं, वहां तक पूरा रास्ता है और गाड़ी को चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत खुशी होती है कि जब आप अपने घर से किसी और गांव में जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, तो हमें खुशी होती है कि लोग अपना हक सरकार से मांगते हैं, जो उनकी जरूरत है वो उनसे पूरी करवाते हैं। सरपंच जी, आप कब से हैं गाँव के सरपंच?
1: मैंने 3 साल हो गए।
0: और आगे आगे जब आप लोगों के पास जाते हैं, और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, गांव में कई बार किसी के साथ मनमुटाव होता है या घर में परिवार सदस्यों का मनमुटाव होता है, क्या ऐसे भी कोई लोग आपके पास आते हैं जो उसका समाधान आपसे चाहते हैं?
1: हाँ जी, बहुत, ये तो रोज चलता रहता है तकरीबन तकरीबन आजकल जी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है
0: जी,
1: वो नए नए ब्याह हुआ जी
0: जी,
1: और कईयों की बेचारे की लव मैरिज हुआ
0: जी,
1: और वो बस 3-4 महीने बाद थाने में पहुंच जाओ।
0: अच्छा,
1: फिर वहां हमारी बहुत जरूरत पड़ा जी, बस वहां तो हम जय रहे जी।
0: ये इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आमतौर पर लोग पहले इस विषय में बात नहीं करते थे, पर अब वो समय नहीं है। अब अगर दो लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक बात सही नहीं है, तो आज चुप नहीं रहते हैं, उसकी बात करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप गांव के सरपंच है, तो सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि जो बात घर की है वो घर में ही रहे, तो अगर गांव में ऐसी कोई बात होती है तो आपकी भी कोशिश यही होती है कि उसका समाधान हम यही आपस में बैठ के करें, पुलिस स्टेशन या थाने में ना जाए।
1: वैसे तो जी आजकल पता क्या बात हुआ जी, गांव में समझदार लोग बहुत कम है,
0: जो पहले थाने में ही जाते हैं बाद में आपके
1: पहले पढ़े लिखे ज्यादा होंगे ना जी,
0: ठीक है,
1: पढ़े लिखे ज्यादा होने का थाने में पहला जहाँ जी,
0: अच्छा,
1: लेकिन निबड़ा गाँव में ही आने का।
0: हाँ, एमिकेबली। चले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अपने गाँव की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं ताकि गाँव और तरक्की करे, जैसे आपने स्टेडियम की बात की, जैसे आपने उन रस्तों की बात की जो डेरों की तरफ जाते हैं, वो तो आपने, कोई और ऐसी बात या अपने जो आपके साथी है गाँव के उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो अपने गाँव के बारे में यही कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे लोग हैं
0: जी,
1: और आपसे मिलकर हाँ जी सारे, और सारे नु यही मेरा तो संदेश है जी, भी अगे वास्ता भी सब पार्टियां नु साइड में रखकर, पार्टियां पूर्टियां ने कुछ नहीं करना जी, सब ने आपसे मिल वर्तना बढ़िया रखो और अच्छे तरीके के रहो, भाईचारा वरतो, कोई जाति धर्म एरा वगैरह कुछ ना वरतो, ये चीजां जो
0: इंसानियत को सबसे आगे रखो,
1: इंसानियत को आगे
0: जी,
1: यही कहना चाहूंगा जी। मैं तो गुरबाणी का फरमान है जी, अवर अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, तो उस गुरबाणी के अनुसार मैं तो कहूंगा भी जीवन जियो और बढ़िया तरीके कर।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपकी बात हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 रेडियो वितस्ता से आज आप सभी श्रोताओं से मुखातिब है और हम आज कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे, उनके दिल की बात भी जानेंगे, और इस समय हमारे पास जो स्रोत है जिसके माध्यम से हम इस गांव में आए हैं वो है बंशीलाल संधू, उनसे बात करेंगे। बंशीलाल जी आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि
2: आपका भी स्वागत है जी आने का,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप अपने गांव के साथियों के बारे में बताएं और आपके गांव में आप किस तरीके से एकजुट रहते हैं, किस तरीके से अपने त्योहार है कैसे मनाते हैं, ताकि सारे जो हमारे सुनने वाले हैं वो आपकी बात को समझ पाए।
2: यहाँ देसी का मई सारा
0: जी,
2: बस तुम्हारा दो लड्डू उसको दे दिए, वो मरा बर्फी दे जाएगा और कोई उसको ले दिए उधर बन दिए, प्यार हो जाएगा तो क्या
0: जी,
2: बनना जरूर हो चाहे कुछ आओ चाहे सवारियां बननी पड़ो, बननी पड़ा ना आपस
0: में। अब आप अपने साथियों के बारे में और अपने गाँव के बारे में बताइए, किस तरीके से आप अपने त्योहार मनाते हैं मिलजुल के?
2: इनका पूरा प्यार है अपना, जो हिंदू है मुसलमान भी आपस में मनाते हैं, क्या सिख भाई या गुरुद्वारे में सब जाते हैं
0: जी,
2: कोई है साझा काम करते हैं।
0: आपके गांव में खास बात क्या है?
2: दिवाली की कुश्तियाँ बहुत तगड़ी
0: जी,
2: हाँ ये बहुत खेड़े बादशाह की है, नगर खेड़े की।
0: सरपंच जी ने अभी बात की कुश्ती की और कबड्डी की,
2: हाँ।
0: उसके बारे में आप बताएं, आप किस तरीके से आप इसको आयोजन कैसे करते हैं?
2: बड़े अच्छे ढंग से लगा जी, तो बहुत इंटरनेशनल गेम चल गई,
0: अच्छा
2: हाँ, नंबर एक चला कुश्ती,
0: तो सरकार का भी उसमें सहयोग होता
2: ना,
0: है
2: सरकार का कोई नहीं
0: है। अच्छा वो आपस में आप मिलजुल के करते
2: हैं? हाँ, आपस में कराएंगे,
0: ठीक है। और जो आप FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता सुनते हैं उसके बारे में कुछ कहें और हमारी श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: नहीं प्रोग्राम अच्छे हैं, समझाने वाली बात है, जो तड़की आवा इतवार को सवेरे 7 बजे हरियाणवी प्रोग्राम है, धाकड़ नहीं जी,
0: हाँ न्याय धाकड़,
2: हाँ न्याय धाकड़, बड़ी अच्छे प्रोग्राम पेश कराए रागणिया लावा
0: जी,
2: ठीक है कुल मिलाएगा प्रोग्राम अच्छे हैं।
0: न्याय धाकड़ के लिए कोई संदेश?
2: बस संदेश क्या, जुग जुग जियो अपनी अच्छी जिंदगी जियो, दुनिया जियो ऐन खुश लगती जियो, बड़ी खुशी से कहती कहते भी लंबी उम्र होगा बड़े आराम मंजे वगैरह लंबी उम्र भी जाएगा ऐन जियो खुला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: ठीक है
0: मंशलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गांव तेजा मोड़ी से मैं भारत सोपोरी और हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे बलविंदर जी से। बलविंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आपका बहुत यहाँ गांव में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज यहाँ पे आए हैं, हमारा मकसद है कि हम आप लोगों से बात करें और आप लोगों की बात रेडियो के माध्यम से सरकार तक तो पहुँचाएंगे ही और साथ में जितने भी हमारे आस पास के गाँव है जहाँ हमारा रेडियो सुना जाता है तो वहाँ पर भी आपकी बात जाए, ताकि अगर यहाँ कोई अच्छी बात है तो हमें अच्छी बात को सभी लोगों तक पहुंचाना चाहे। आप अपना परिचय दें, आपको गांव में किस नाम से जाना जाता है और उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मेरा नाम बलविंदर सिंह संधू, कुक्कू के नाम से जानते हैं
0: जी।
1: और हमारी समस्या है, सरपंच साहब ने सारी समस्याएं आपको बता दी,
0: तुलसीलाल
1: जी ने बता दी
0: जी।
1: चलो, हमें एक समस्या थोड़ी है, पिपराड़ी वाली जमीन यहाँ पे सैकड़ों एकड़ है
0: जी,
1: जिम्मेदार हैं छत्ती बरादरी के जिम्मेदार,
0: हरिजन
1: भी, जाट भी, शर्मा जी भी, कहार भी, सारे तरह के सैनी भी, सारे तरह के खेती करते। समस्या उनकी यही है जो धुएं वाली, उसका कोई सलूशन नहीं जिम्मेदार का।
0: नहीं, मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा, पराली जो पराली जो खेत में है, आप उसको जब जलाते हैं तो उस धुएं से परेशानी होती है या आप उसको जलाना नहीं चाहते?
1: जलाना नहीं चाहते।
0: गवर्नमेंट को अभी जैसे हमने भी कुछ समय पहले पढ़ा था कि सरकार ने कुछ ऐसा समाधान किया है कि आप उस पराली को काट के उसके वो गड्ढे बना दे, और क्या ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से है या नहीं है? तो वो जो गटर बना लेते हैं पराली के, वो क्या हम जो गांव के लोग अपने खर्चे से करते हैं, क्या करते हैं?
1: अपने खर्चे से करते हैं सर, ये तो नहीं उठाते।
0: अच्छा,
1: इसका सलूशन नहीं है,
0: क्योंकि
1: जो कणक बोने का टाइम हो, ये सियाने कहते हैं भी सिरख जाते होना लेट हो जाते हैं,
0: ठीक है,
1: कणक बोते हुए,
0: ठीक है,
1: तो इसका सलूशन तो कुछ करना पड़ेगा।
0: यानी कि अगर पराली कट गई तो उसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए ताकि खेत खाली हो जाए, आप अगली फसल को लगाएं। पर एक तरीका ये भी है कि जो पराली है एक मशीन से उसको काटा जाता है तो वो खेत में ही आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, उसके एक तरीके से खाद बन जाती है। फिर जब आप उसको क्या बोलते हैं,
1: सुपर सीडर,
0: तो जब उसमें ट्रैक्टर आप चलाते हैं तो वो उसमें मिट्टी में मिल जाता है, तो क्या वो समाधान सही नहीं है?
1: समाधान तो है, जब उसको बाही करके रोनी कर देते हैं सारा बात नहीं जाता, फिर खेतों में वो जब वो देते हैं उसको तो कीड़ा लग जाता है फसल में नीचे।
0: यानी कि आज के डेट में जैसे सरकारें कहती हैं कि लोग या जो जमींदार है वो जानबूझ के पराली जलाते हैं, तो आप लोगों का कहना है कि आप जलाना नहीं चाहते?
1: जानबूझ के कोई नहीं जलाता,
0: ठीक है,
1: सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जमीन सैकड़ों एकड़ जमीन है, 1500-1600 फुट रहे यहाँ
0: जी,
1: और सैकड़ों एकड़ जमीन है, 3600 किला जमीन का है
0: जी। जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात जरूर पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रामवासी है या जो जमींदार है या जो खेतीबाड़ी करते हैं, वो चाहते हैं कि हम पराली को ना जलाएं, ताकि हम वातावरण को भी शुद्ध रखें, किसी और को सेहत की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब पराली जलती है तो धुएं से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। पर इनका ये कहना है कि हम सरकार से अनुरोध ये करते हैं कि सरकार हमें कोई समाधान दे, ताकि पराली का जो प्रबंधन है वो अच्छी तरीके से हो, और ताकि उनकी खेत जल्दी से जल्दी खाली की जाए, ताकि वो अगले फसल के लिए खेत को तैयार करें। आप क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अभी जैसे

0: तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो डिग्री भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं, बट वो अपनी खेती के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो सब्जी के काम करते हैं या जो जीरी या कनक की का काम करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे अपने परिवार को अपने समाज को खेती के साथ जोड़े रखे
1: हैं? सारे गांव में सभी जातियों ने अपने बच्चे जुड़े हुए हैं फिर भी जैसे तैसे
0: जी,
1: और कोई काम तो ज्यादा तो बिजनेस में तो होता नहीं होता, तो कुछ है लोग जो प्रॉपर्टी डिलीवरी का भी काम करते हैं और भी दर्जी का भी काम करते हैं, बिखेरे हैं
0: जी,
1: सारे तरह के काम करते हैं।
0: जो आसपास के गांव है जहां तक हमारे रेडियो की आवाज जाती है, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं?
1: खेती हमारा धंधा है
0: जी,
1: इसके साथ जुड़े हुए हमारा यही अनुरोध है अगले बच्चों को, इसे बगैर कुछ नहीं। सारे काम बंद हो गए थे जब वो आया था कोरोना, तो ये एक धंधा था जो चलता था।
0: और वो एक्चुअली विश्व भर की एक परेशानी थी, पर हमारे देश ने, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश ने उस कोरोना को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला, हम सबको इंजेक्शंस दिए, तो हमारे देश का इतना नुकसान नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलविंदर जी, आपने हमसे बात की और हमारे श्रोताओं से बात की।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अम्बाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
0: गांव तेजा मोड़ी से हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर बात कर रहे हैं और यहां के गांव में आए हैं और सभी से बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे हाकम सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
5: स्वागत है जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव में जो वातावरण है, जो साफ सफाई है, जो पानी का घरों में आना, उसके बारे में आप बताएं, और अगर आपके पास कोई और भी मन में कोई बात है जो आप सभी श्रोताओं को कहना चाहते हैं वो भी कह दीजिए।
6: सबसे बड़ी समस्या यहाँ आवारा डंगरों की है
0: जी।
6: आवारा डंगर बहुत हैं, इसका सलूशन होना चाहिए था
0: जी।
6: ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, फसलों भी उजाड़ रहे हैं, ट्रैफिक को भी परेशान कर रहे हैं, आने वाले बंदे को टक्कर भी मारते हैं, फसलों को भी उजाड़ते हैं
0: जी।
6: इनकी रखी करनी बहुत मुश्किल।
0: तो क्या ऐसा नहीं है कि गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिनके वो डंगर है वो उनको अपने पास बांध के रखते हैं या खुले छोड़ देते
6: हैं? तो छोड़ देंगे कोई
7: आवारा,
6: आवारा, आवारा।
0: अच्छा, जो किसी और गांव से
6: गड्डी गड्डी छोड़ के चले जाए,
0: तो इसका क्या समाधान हो सकता है?
6: ये यहाँ का कोई गौशाला वगैरह का होना चाहिए जरूर।
0: अच्छा, तो क्या आप लोगों ने अपने सरपंच जी को इस तरीके का कोई रेजोल्यूशन सरकार को देने की बात करी है ताकि वो आप लोगों की ओर से सरकार को कहेंगे कि हमारे गांव में ये समस्या है?
6: यहाँ थोड़ी दूरी पर है गौशाला खुली, वहाँ पे लेके जाते हैं, वापस कर लेते हैं, लेते नहीं है।
0: अच्छा,
6: कहते हमारे पास तो इसका खर्चा नहीं पुगता, हम कहाँ से रखेंगे
0: उनको? उनको वहाँ कुछ पैसे देने होते थे, अब ऐसा सिस्टम है कि नहीं?
6: पैसे भी लेते हैं, फिर भी हम वहाँ से इस दरवाजे से छोड़ेंगे, दूसरे दरवाजे से निकाल देंगे, अगले दिन फिर हमारे गांव में खड़े हुए।
0: अब आप यही जो बात कहना चाहते हैं सरकार से, आप वो एक बार फिर कहिए ताकि हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आपकी बात को सरकार तक पहुंचा सकते।
6: हमारे पास से इसके पैसे भी ले लेते हैं
0: जी,
6: 1100 किसी की पर्ची काटते हैं
0: जी,
6: उल्टा हम बोलते हैं कि इसके बारे में तूड़ी भी दो, हमारे को घास भी दो, इस दरवाजे से छोड़ते हैं, दूसरे दरवाजे निकाल देते हैं, अगले दिन फिर हमारे पास अस्त्री खड़े।
0: यानी कि
6: हमारे को आवारा जानवर खेत में नील गए, बहुत नुकसान है, अनुरोध करते हैं अभी हमारा ये समाधान जरूर करें।
0: देखिए, हम भी इसीलिए आए हैं यहाँ पर ये जानने के लिए कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो शायद सरकार तक आपके गांव के जो मुखिया होते हैं उनसे तो पहुंचती है, पर आवाज की दुनिया एक अलग एक माध्यम है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ आके आप सबसे बात करें और उस बात को सरकार तक पहुँचाएं।
6: एक बार बहुत धन्यवाद आप वहाँ पे पहुँचाओ बात।
0: और यहाँ आपके गाँव में बंसीलाल संधु जी हैं, इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ ये नहीं हो वहाँ पर कुछ आनंद नहीं आता,
6: तो ऐसा रौनक मिल रहा है जी हमारे गांव पर।
0: क्या कहना चाहेंगे, क्या
6: बहुत कुछ मजा मिलता है जहाँ पे चार बंदे में बैठता है
7: कलाकार।
0: हम आपके गांव में इनके माध्यम से आए क्योंकि इन्होंने हमसे बात की, तो हमने इच्छा जाहिर की कि हम आपके गांव में आएंगे, तो आज हम आप सबके पास।
6: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आपका हाकम सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: एक बार फिर मैं भारत सोपोरी गांव तेजा मोड़ी से हम इस गांव में आए हैं और अभी हमने कुछ लोगों से बात की। अब हम यहाँ के जो युवा है उनसे बात करेंगे, उनके दृष्टिकोण से जानेंगे कि हमारा जो गांव है वो किस ओर चल रहा है, कितनी तरक्की गांव में हो रही है और कितनी तरक्की आने वाले दिनों में हमारे देश की तो है। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना परिचय पहले दें।
2: आपका भी स्वागत है सर।
1: धन्यवाद।
2: मेरा नाम रमनदीप सिंह है, मैं यहीं तेजा मोड़ी गांव का रहने वाला हूं और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है डिप्लोमा और बीटेक करके। मैं यमुनानगर इज़जे कंपनी में जॉब करता हूं।
1: जी, तो आप हर दिन तेजा मोड़ी गांव से यमुनानगर जाते हैं और शाम को वापस आते हैं या वहीं रहते हैं?
2: नहीं, मैं पहले रहता भी था, मेरी ड्यूटी के हिसाब से जैसे नाइट होती है तो मैं आ जाता हूँ
1: जी,
2: मतलब डेली अप डाउन भी करता हूँ।
1: तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है?
2: अम्बाड़ा सिटी से ही करी है सर।
1: अच्छा।
2: किया और यमुनानगर जगाधरी से बीटेक किया।
1: बीटेक किया हुआ है। आपसे हम जानना चाहेंगे, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं।
2: जी,
1: आप मुझे ये बताएं कि आपके गांव में सारी सुविधाएं हैं, जिस सुविधा के साथ अपने जीवन यापन आप अच्छे से कर पाते हैं?
2: जी, मेनली हमने जो जैसे हमने अपना जो बचपन गुजारा है और जो देखते आए हैं, हमारा सब कुछ सही है। मतलब हमें इतनी दिक्कतें यहाँ गांव के हिसाब से इतनी हुई नहीं, जैसे लाइट की, पानी की या आने जाने की समस्या, मतलब इतनी कोई इशू हुआ नहीं। लेकिन मेरा जो मेन यहाँ अभी जो देखता आ रहा हूँ ना, जो आजकल के बच्चे हैं, तो मेरा तो मेन यही है कि जैसे आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा हो गया है
1: जी,
2: तो उसको देख के सोशल मीडिया को ना, अब हर घर में एक नहीं दो दो तीन तीन सब पे स्मार्टफोन है, तो बच्चे खेल कूदने की बजाय, फिजिकली एक्टिविटी की बजाय, अपने मोबाइलों में वही गेम में खेलना, सोशल मीडिया चलाना, वही आजकल इंस्टाग्राम रीले वगैरह है, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपना उसी पे स्पेंड करते हैं।
1: तो क्या आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय गुजारने से हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है और उनका जो ध्यान एजुकेशन पर या अपने काम पे होना चाहिए उससे वो भटक रहे हैं?
2: जी, अब देखो सर, हर चीज़ का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। अब सोशल मीडिया का, इंटरनेट का फ़ायदा भी है अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। अगर हम उसको पढ़ाई के माध्यम से देखें तो उसका हमें बहुत यूज़ भी है, जो हमें चीज़ें नहीं पता लगती थी वो हम आजकल ये नेट से देख लेते हैं, गूगल से सर्च कर लेते हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन उसका नुकसान भी है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, रिले है या गेमिंग है, उस पर मतलब फिजिकली एक्टिविटी ना करने की बजाय बच्चे सारे अपने घर में बैठ के इंडोर
1: गेम्स ही खेलते हैं। हाँ। जिससे उनके सेहत पर असर पड़ता है। आपको जहाँ भी मौका मिलता है, जैसे गांव में जब आप होते हैं, तो क्या आप इस तरीके के बातें अपने जो युवा साथी हैं या बच्चे हैं उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमें जो पढ़ाई करनी है उसकी दिशा वो होनी चाहिए कि जो हम पढ़ाई भी करें और घर के काम भी करें और फिजिकल एक्टिविटी भी करें, तो क्या ऐसा मौका कभी मिलता है?
2: कभी कभार जो जैसे मिल जाते हैं तो साथी मिलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं जो खेलते हैं, कभी जैसे चले गए। अब मैं आपको बताया ना, सबसे मेन तो यही है, जब हम बच्चे थे, बचपन बताया, यहाँ पर बहुत खेलते थे हम, साथ में खेल रहे हैं। लेकिन अभी जब बाहर निकल के देखते हैं ना, तो कोई खेलता हुआ ही नहीं मिलता। और दूसरा, जो हमारे सरपंच साहब ने पहले बताया भी है कि यहाँ स्टेडियम ही नहीं है, मेन तो यही है कि जब कुछ खेलने का साधन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो वहाँ खेलेंगे कैसे?
1: कैसे खेलेंगे
2: बच्चे? मतलब बहुत कम आज के टाइम में बाहर खेलते हैं, सोशल मीडिया पे, नेट पे, मोबाइल पे ज़्यादा लगे हुए हैं। मतलब बच्चों को अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। और जो आपने मेरे को पहले क्वेश्चन किया उस पे मैं वापस आऊँगा, ये है कि जैसे हम मिलते हैं, अब मैं यही कहता हूँ कि जैसे जो हमने दिक्कतें देखी हैं कि किस टाइप की पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपने यहीं पे रह के जो हम और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि जिससे और आगे आने वाले बच्चों को दिक्कत ना आए, तो वो उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कभी कभार।
1: आपसे जानना चाहूँगा कि जो गांव तेजा मोड़ी है, इसमें एक युवा होने के नाते आप आने वाले दिनों में क्या बदलाव देखना चाहेंगे, जो सरकार की ओर से हो, जो जिससे यहाँ के बच्चे और आगे बढ़ें, तरक्की करें, क्योंकि अगर गांव तरक्की करता है तो हमारा देश आगे बढ़ता है।
2: मेनली तो सर यही है, कि जो जैसे बच्चे आजकल देख के बड़ों को ही देख के, छोटे बच्चे हैं जो बचपन में जैसा देखेंगे वैसे ही वो बड़ा होके वो करेंगे, अगर नशा और ये इन चीज़ों से हटके पढ़ाई पे खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान होएगा तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही कम हो जाती हैं। अगर वो देखते आ रहे हैं अपने ही बड़ों को जो नशे करते हैं खेल कूद नहीं
1: उसका
2: करते,
1: असर
2: तो ऑटोमेटिक वो उनको देख के ही सीखते हैं।
1: मैं आपके सरपंच जी का साधुवाद देता हूं क्योंकि वो खेल कूद को यहाँ बढ़ावा देते हैं। जब युवा खेल कूद की तरफ जाते हैं तो नशे और बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान कम जाता है और फिजिकली वो स्ट्रांग रहते हैं। तो अंत में आप हमारे अम्बाला के सभी युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं?
2: सर यही संदेश है कि खेलो कूदो, बढ़िया पढ़ाई करो, नशे से और इससे दूर रहो और देश की तरक्की करो।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये जानना चाहूँगा कि भारत सरकार जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो ये चाहती है ये पता करना कि लोगों के घरों में नल से जल आता है और जो पर्सनल हाइजीन है वो गांव में कितना होता है और खास करके जो फीमेल्स है उनकी पर्सनल हाइजीन के लिए क्या गाँव में वो सारी सुविधाएँ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अब तो सर पिछले 10-15 साल से मतलब पढ़े लिखे हैं सब, आजकल सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिक अगर कोई नहीं भी बता रहा तो देख लेते हैं कि ये चीज करनी चाहिए, ये ठीक है ये गलत है। तो हाइजीन और पर्सनल हाइजीन तो अपने आप ही मेंटेन कर रहे हैं और गांव में ठीक ठाक है, सब बढ़िया है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने युवाओं के दृष्टिकोण से बात रखी और जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं वो हमें दिशा निर्देश देते हैं और जब युवा उस चीज को रेसिप्रोकेट करते हैं तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होती है। और बड़ों का आदर और सत्कार करना हमारी संस्कृति में है
2: जी,
1: हमारी सभ्यता में है। जो बड़ों के दिए हुए संस्कार और उनका हम सम्मान करते हैं तो तब तक हमारी उन्नति चलती रहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी धन्यवाद।
3: वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
1: इसी श्रृंखला में हम बात अब करते हैं गुरजीत सिंह जी से। और गुरजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के इस कार्यक्रम आओ गांव चले में। हम गांव तेजा मोड़ी में आए हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ प्रश्न। सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम गुरजीत सिंह और मैं इस मोड़ी गाँव का निवासी हूँ। मेरी 30+ एज होगी
1: जी। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं?
4: नहीं, मैं जॉब और खेती दोनों
1: करते हैं। और जो खेती बाड़ी आप करते हैं, जब युवा खेती के साथ जुड़ते हैं तो कितना सरल हो गया है खेती बाड़ी करना पहले के कंपैरिजन में?
4: सर सरल तो हो ही गया है 100%, क्योंकि पहले तो काफ़ी सारा दिन खेत में रहना पड़ता है
1: जी जी।
4: अब तो खेत में हफ्ते में एक दो या दो दिन चक्कर लगा लो तब भी अपनी खेती हो जाती है। अब मैं हफ्ते में एक दिन चक्कर लगाता हूँ संडे वाले दिन और खेत में,
1: यानी कि मशीनी दौर आने के साथ साथ। तो यहाँ पर केवल जीरी और कनक होती है या सब्जियों का भी?
4: ये जो हमारा इलाका है इसमें मैक्सिमम जीरी और कनक ही करते हैं
1: जी,
4: इसमें और सब्जी वगैरह कुछ नहीं।
1: अच्छा, तो कई जगहों पर हम देखते हैं हरियाणा में कि लोगों ने अब जो खेती में धान की और गेहूं की खेती करते थे अब उन्होंने अलग अलग सब्जियों का काम भी शुरू किया। अभी इस गांव में ऐसा नहीं है?
4: नहीं, क्योंकि ये हमारा थोड़ा लकर एरिया है जी, जो हमसे 2-3 किलोमीटर आगे चले जाओ दड़ाना साइड, यहाँ पे खेती भी सिर्फ सब्जी की होती है, वहाँ पे जीरी कनक नहीं उग सकते वो।
1: अच्छा,
4: तो गन्ना और ये सब्जी सारी गोभी वगैरह मिर्चा सब यही लगी मिलेंगी।
1: अच्छा,
4: जो हमारा ये एरिया है थोड़ा सा इसमें सिर्फ जीरी और कनक ही करते हैं।
1: आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो प्रेरित हो आपकी तरफ, वो आपकी बात पर वो ध्यान दें? क्या संदेश आप देना चाहेंगे युवाओं को ताकि वो अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान क्या होना चाहिए?
4: सर योगदान तो सर एक तो स्टार्टिंग से उनके माँ बाप पे डिपेंड करता है, नींव वहीं से रखी जाती है। अगर माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे
1: जी,
4: तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते पर चलेगा
1: जी।
4: अच्छी पढ़ाई के बाद वो अच्छा कहीं जॉब भी लगेगा, एग्जाम भी करेगा
1: अपने घर के लिए भी,
4: घर के लिए भी अपना। सबसे पहले उसके माँ बाप पे डिपेंड है, वो अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको अच्छी पढ़ाई कराएं और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसकी थोड़ा निगरानी भी रखें। एक उम्र ऐसी आती है कि बच्चा वहाँ पे थोड़ा हिल डुल जाता है, अपने फर्जों से लगा लो, किसी नशे में ना पड़ जाए, किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, तो माँ बाप उसके देखे, उसकी देखभाल करे, थोड़ा फ़ोन से उनको थोड़ा हटाए, ज़्यादा टाइम फ़ोन के भी ना यूज़ करने दें, फ़ोन का भी एक लिमिट रखे, खेलने की भी लिमिट रखी है, ये ज्यादातर मैक्सिमम के माँ बाप पे डिपेंड करता है। अगर घर का माहौल सही है तो बच्चा ऑटोमेटिकली सही है।
1: अगर आपको गांव में कहीं मौका मिलता है तो जो युवा होते हैं, क्या आप उनको कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि उनका जो दिनचर्या है, उनका जो पढ़ाई की तरफ रुझान है वो होना चाहिए?
4: हाँ, मैक्सिमम जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ काफ़ी लगाव, वैसे मुझे बच्चों के साथ लगाव है, जितने मेरे अटैचिंग बच्चे रहते हैं वो, उनको तो मैं हमेशा सही गाइड ही करता हूँ कि क्या करना है, कितनी देर फोन, मेरे पास कोई बच्चा फोन नहीं देखता, जितनी देर मेरे पास रहेंगे वो खेलेंगे ही मेरे साथ
1: जी।
4: और मैं उनको यही चीज़ कहता हूँ कि फोन कम से कम देखो जितना देख सकते हो, बाकी खेल कूद में रहो, फोन से उनका माइंड तो तेज हो जाएगा, पर उनका जो
1: फिजिकल एक्टिविटी
4: बिल्कुल लड़ाई, वो छोटे छोटे छोटा भी काम भी नहीं कर सकते, या थक जाते हैं लगा लो या भाग नहीं सकते, हम मान लो जितना हम भाग लेंगे 30-35 प्लस में, वो भी उतना नहीं भाग सकते, वो भी अभी 10-12 साल के मान लो कुछ भी, क्योंकि वो फोन ही देख रहे हैं सारा दिन, फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे। मैं तो ये चाह रहा हूँ वो फिजिकल एक्टिविटी में खेलें कूदें, तो थोड़ा फोन कम करें।
1: युवा होने के नाते और गाँव की जो आपके मुखिया हैं और सरकार से, आप कोई कुछ ऐसी बात रखना चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं कि आपके गाँव में हो, ताकि आपका गाँव और आगे बढ़े?
4: कोई आसपास में, जैसे हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर के आसपास कोई इंस्टीट्यूट किसी तरीके का कोर्स टाइप, कोई ऐसा कुछ सरकार बना के दे,
1: जैसे ITI या इस तरीके का,
4: कोई बाला जाना पड़ता है, बाला के लिए हमारे पास साधन कम है, बस दो ही टाइम आती है, एक सुबह और एक शाम को, बाकी तो ऑटो वगैरह तो लोग तो साधन हो गए हैं, पहले टाइम भी थोड़ा इसी का साधन नहीं थे, और बंदे के पास हमने एक्टिवा हो गई है, लेके चला जाता है, माँ बाप भी छोड़ देते हैं बच्चों को।
1: आपका कनेक्शन अम्बाला शहर से रहता है या अम्बाला छावनी से?
4: शहर से
1: ज्यादा
4: सारे काम अम्बाला शहर।
1: और अंत में आप युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
4: बस यही संदेश है सर, अपनी माँ बाप की सेवा करो
1: जी,
4: और नशे से दूर रहें सर, और अच्छी पढ़ाई करें, अपने घर परिवार का नाम रोशन करें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गांव में आके, और ये कार्यक्रम आओ गांव चलें हमने तैयार किया, और इसमें मेरा सहयोग राहुल ने दिया, और सभी गाँव वालों का, और खास करके हम शुक्रगुजार हैं सरपंच जी के और बंशीलाल संधू जी के, और हम उम्मीद करेंगे हम अगली बार फिर आएंगे, कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे और उनकी भी दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में ये आपसे जानना चाहूँगा, जो एक प्रथा पहले होती थी कि जब गांव पानी की जरूरत होती तो गाँव की महिलाएं मटका लेके कहीं दूर से पानी ले आती थी, तो क्या उस प्रथा से हमारी महिलाओं को मतलब आजादी मिली है कि नहीं मिली?
4: वो तो सर 100% आजादी उससे, वो तो सर 10-12 साल से कहीं भी कोई भी घर पे पानी लेने नहीं गया कहीं बाहर,
1: और ना शौच करने कोई बाहर जाता है,
4: वो सर सबके घर में लैटरिन बन चुकी है सर 10 साल से, और सब अपने घर में सफाई।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हम आप सभी गाँव वालों को शुभकामनाएं देते हैं, ये गाँव ऐसे ही तरक्की करे, उन्नति करे, और हम एक बार फिर आए और ये गांव इससे भी आगे बढ़ा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

चंचल शौक मासूम बेपनाह खूबसूरती की मिसाल, कुदरत की कारीगरी, एक चेहरा जो पहले पर्दे पर सिनेमा के चाहने वालों की पहली पसंद रही है। 50, 60 और 70 के दशकों में कोई और नहीं, सिर्फ नरगिस दत्त।

नरगिस हिंदी सिनेमा की एक महान अदाकारा थी, जिनका जन्म फातिमा राशिद के रूप में पहली जून सन 1929 को रावलपिंडी या कलकत्ता में हुआ था।

नरगिस ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म अंदाज, आवारा, श्री 420 और फिल्म मदर इंडिया शामिल है। आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहेंगे, फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

नरगिस की आखिरी फिल्म रात और दिन सन 1967 यानी 1967 थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था।

इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। कौमी एकता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, जिनमें बॉलीवुड के मेगास्टार संजय दत्त हैं। राज कपूर और नरगिस के बीच रोमांस की चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोरती रहीं।

नरगिस ने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, सभी के दिलों पे राज किया। सन 1952 में फिल्म बेवफा, अनहोनी, अंबर, धुन, आहा और सन 1956 में अंगारे जैसी फिल्मों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

राज कपूर के साथ स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे जागती रहो फिल्म में नरगिस नजर आई थी। ये नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। नरगिस को सन 1980 से सन 1981 तक पार्लियामेंट के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। 51 साल की उम्र में नरगिस कैंसर की वजह से 3 मई सन 1981 को इस दुनिया से चल बसी।

नम्रता दत्त और प्रिया दत्त, उनकी दो बेटियां हैं। लगभग 51 फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया। फिल्म अदालत, लाजवंती, जागती रहो, घर संसार, अंगारे, पापी, परदेसी, यादें, बरसात, आग, अंदाज, दीदार, काला बाजार, मिस इंडिया, बाबुल, मेला, अंबर और जोगम जैसी कामयाब फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया और एक खूबसूरत, मजबूत अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विद आस्था। हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 14। आज का शीर्षक है परिवार के मायने। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किन्नी।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर, हम सफर जिंदगी का। आज का टॉपिक है परिवार माने क्या। कई बार हमारे आसपास के रिश्ते बीमारी की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां लक्षण कम दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ मर चुका होता है। आपसी जुड़ाव भावनात्मक या केवल रस्मी या जानने के लिए परिवार की भावनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा क्या है और क्या करें? रिश्ते भी एक सिस्टम की तरह होते हैं जिनमें संवाद, सहानुभूति, आदान प्रदान, स्पेस और इज्जत जैसे भाग होते हैं। इनका समय समय पर ऑडिट होना जरूरी है, वरना रिश्ता सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाता है। फैमिली ऑडिट चेकलिस्ट। क्या आप बिना डरे अपने दिल की बात घर में किसी से कह सकते हैं? क्या हर सदस्य को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता मिलती है? क्या घर में बातचीत और संवाद हमेशा खुले और ईमानदार रहते हैं और चुप्पी के बजाय विचारों का आदान प्रदान सामान्य होता है? जब आप घर आते हैं तो क्या एक अपनापन महसूस होता है या घर लौटने का सुकून लगता है? क्या आप सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही इस परिवार का हिस्सा है या आपके कठिन वक्त में भी कोई आपका दर्द समझने वाला है? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों बुजुर्गों की मौजूदा भावनात्मक जरूरतें क्या है? क्या थैंक यू और सॉरी जैसे शब्द आपके परिवार की बातचीत में है? क्या आपके घर में सिर्फ जरूरी और कामकाजी बातें होती है या इससे परे भी आप एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं? किसी सदस्य के रोने या परेशान होने पर कोई पूछता है कि क्या हुआ? क्या परिवार में किसी के सामने दिल खोल कर रो भी पाते हैं? अगर इनमें से 5 या उससे अधिक सवालों का जवाब ना में है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने रिश्तों की गहराई और आपसी समझ और संतुलन पर विचार करने की जरूरत है। लाल झंडिया। जब रिश्ते सिर्फ चल रहे होते हैं, खुलकर बात नहीं।

जब आप मन की बात कहने से डरे या लगे कि आपको समझा नहीं जाएगा, तो ये रिश्ते से दूरी का संकेत हो सकता है। सब साथ होकर भी मोबाइल पर हो, डिजिटल दूरी धीरे धीरे रिश्तों को खाली कर सकती है। बातचीत सीमित हो गई है, कब आओगे, बिजली का बिल भर दिया जैसे बातें तो होती है, लेकिन दिल की बातें, हंसी मजाक और साथ बिताया समय कम होता जा रहा है। साथ होते हुए भी अकेलेपन लगी, ये गंभीर संकेत हो सकता है। भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं बची, ना आप पूछते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, ना उन्हें फर्क पड़ता है आप क्या महसूस कर रहे हैं। तकरार या फिर खामोशी, जब संवाद का स्थान तकरार या चुप्पी ले ले तो धीरे धीरे रिश्ता थकने लगता है। सोशल मीडिया पर एक्टिव पर एक दूसरे से दूरी, दोस्तों के साथ चैट करना तो चलता रहता है, लेकिन घर के लोगों के साथ बात करने की फुर्सत नहीं होती। ये भावनात्मक प्राथमिकताओं का असंतुलन है। सिर्फ औपचारिक रिश्ते, अगर रिश्ते केवल जन्मदिन, सालगिरह और अन्य खास दिनों पर बधाई देने तक सीमित है, तो ये दर्शाता है कि रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है, भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो चुका है। सुधार की ओर इशारा, माफ करने की प्रवृत्ति, जब कोई गलती हो तो सामने वाला कहे कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, तो ये रिश्ते को ठीक होने का संकेत है। मुश्किल समय में साथ देना, असली रिश्ता तब दिखता है जब कोई बीमार हो, तनाव में हो या टूट रहा हो और परिवार बिना कहे मौजूद हो, सब एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मजबूत संबंध वाले लोग खुश और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब कोई परवाह करने वाला व्यक्ति आपके प्रति स्नेह दिखाता है, तो आपके शरीर में अच्छा महसूस करने वाले रसायन निकलते हैं, इससे आपका तनाव कम होता है, आपका मूड अच्छा होता है। आपके साथ एक देखभाल करने वाला वयस्क का होना लचीलापन पैदा करता है। जब आपके पास सहायता या सलाह के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति होता है, तो आपके चुनौतीपूर्ण समय से उबरने की संभावना अधिक होती है। देखभाल करने वालों के साथ घनिष्ठ संबंध आपको स्वयं के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने में मदद करते हैं। पारिवारिक कर्तव्य और परंपराएं आपको ये समझने में मदद करती हैं कि आप कौन हैं, आपको किस चीज की परवाह है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेत या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: आज का जो ललवाक है ये बड़ा ही विचित्र ललवाक है, इसमें आपको साइंस भी दिखेगा। मैं इस ललवाक की बात आपको बताता हूँ। लल कहती है, बान गोलते प्रकाश आव जूंगे, चंद्र गोलते मुती सेथ, सेथ गोलते कहते ना पुने, गई भूर वह सुहा बेजरित कहते। इस वाक में आपको सुनाई देगा कि बान गोलते प्रकाश आव जूंगे, यानी सन जब डूब जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो चंद्रमा निकल के आता है, मून चमकना शुरू कर देता है। और जब वही मून डिसअपियर हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है? बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो अस्वह, तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है, ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हटके मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है, और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा, अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाए तो फिर वहाँ शून्य ही बचता है उस अंधकार में, बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

0: बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: दोईचु बजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

आदाब को मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते। अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बे इंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट

कहानी का बुलबुला जो बनता रहा, मिटता रहा। कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उड़का नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ। अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: You're enjoying 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक हेमलता जी, पेश करेंगे RJ किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास रेडियो प्रोग्राम सुनहरे पल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गायिका से जिन्होंने अपने सुरों से हमारे दिलों को छू लिया है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। आज हमारे सिंगर है

हेमलता जी। हेमलता भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका है। 1970 के दशक के अंत से बॉलीवुड में एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही है। वह शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थी। उन्होंने खुद को फिल्म, संगीत गोष्ठी, टेलीविजन और संगीत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान की एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।

हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने उन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। इनका ये संघर्ष आगे भी रहा।

बचपन में हेमलता दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। वह परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वह परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर खुद को गाने से रोक नहीं पाती थी। बचपन के इस छोटी उम्र में ही लता जी, किशोर कुमार, हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने इन्होंने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया। फलस्वरूप हेमलता बेबी लता के नाम से मशहूर हो गई।

हेमलता जी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएगी, साथ ही साथ मैं हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर, आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया उनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र महज थी 13 साल। जिस दिन बेबी लता उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके पहले एसडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त एक से बढ़कर एक गीतकार के साथ काम किया। बेबी लता हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी।

इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वह उस दौर के अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। गाना कौन दिशा में लेकर चला गया, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ।

इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। रविंदर जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक सीरियल में वो अभिनय भी करती नजर आई। वह एक एपिसोड में पारंपरिक मेरा भजन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो गीत नजर आये।

हेमलता जी ने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 38 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गाए, परंतु इनमें से 2 एल्बम ही रिलीज हुए। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। बॉलीवुड से विदाई लेकर वह मैक्सिको चले गई। वहां उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने का काम करने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिसने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत अकेडमी शुरू की। उनकी अकेडमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के साथ साथ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस से लेकर पूरी दुनिया में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस संगीतमय यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना समय दिया और हेमलता जी के गीतों का रसवाद किया। हेमलता जी, आपके मधुर स्वर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने गीतों से सुखद अनुभव देते रहेंगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। आज के कलाकार थे पार्श्व गायक हेमलता जी। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज का ये प्रोग्राम स्पेशली डेडिकेटेड है सभी फादर्स को।
5: पिता को घर की नींव कहा जाता है, जिसके बिना घर का टिकना मुश्किल है। पिता वो पेड़ है जिसकी छाया के नीचे सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं, जिसके साथ होने से कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, जिसका हाथ पकड़ते ही लगता है कि अब दुनिया भी जीती जा सकती है।
4: ज्यादातर हम माँ के बारे में लिखते पढ़ते हैं, माँ की ममता, माँ का आंचल सब महसूस करते हैं, लेकिन उस प्यार भरे आंचल से बाहर की दुनिया के लिए हमें तैयार हमारे पिता

पिता होना सिर्फ बच्चे को हाथों में उठाने की भावना को ही नहीं कहा जा सकता, उसके साथ उस नन्ही जान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पिता होने का अनुभव महसूस करवाती है। पहले जो खुद की खुशी के लिए किया जाता था, वो अब किसी और की

0: की मुस्कान के लिए करना ही पिता होने की अनुभूति है।
1: पिता बच्चों का सुरक्षा कवच है, इसलिए कठोर तो होना ही होगा उन्हें। यही उनकी प्रकृति, बच्चों को हर मुश्किल पल और कठिनाइयों से निकलना सिखा देती है। पिता की चुप्पी व्यवहारिक सलाहों और सख्ती के पीछे छुपे नाजुक भाव और सलाह समझना जीवन को समझना है।
0: कहा जाता है पिता कभी भावुक नहीं होते, लेकिन जब बात बच्चों को अपने से दूर भेजने की आती है तो एक माँ की तरह उनकी भी आंखें नम होती हैं। लेकिन पिता अपने बच्चों के हित में बहुत दूर की सोचते हुए ना सिर्फ अपनी आंखों से उन्हें दूर भेजते हैं, बल्कि भविष्य के लिए संपूर्ण योजनाएं करते हुए पूरे परिवार को भी तैयार कर लेते हैं।
1: यूं ही ये बातें जारी रहेंगी। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर फादर्स डे स्पेशल।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर फादर्स डे स्पेशल प्रोग्राम। कोशिश तो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए यही थी कि सभी फादर्स के लिए ये दिन खास बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश पर हम खरे उतरे होंगे।
1: वैसे जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे पिता और बच्चे का रिश्ता भी बदलते देखा है। जहाँ पहले बच्चे पिताजी कहकर पुकारते थे या बाबूजी, वहीं फिर पापा कहकर पुकारने लगे और फिर डैडी।
0: हाँ, पहले समय में बच्चे तो पिता के सामने आने से भी कतराते थे, लेकिन आज के समय में ये रिश्ता थोड़ा बदला है और आज बच्चे अपने पिता से खुल कर बात कर पाते हैं। और एक उम्र के बाद फादर्स भी अब बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर रखने की कोशिश करते हैं।
1: बदलते दौर के साथ सब बदलता है, जीने का तरीका, बात कहने का तरीका और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ सोच का बदलना भी जरूरी है। शायद इसलिए पिता अब स्ट्रिक्ट थोड़े कम और फ्रेंडली ज्यादा होने लगे हैं, ताकि इस जनरेशनल गैप को पूरा कर सके, या कह लीजिए बीच के फासले को हटा सके।
0: करते रहेंगे इस दौर की और फादर्स डे स्पेशल में हमारे प्यारे फादर्स की बातें। तब तक के लिए आप सुनिए ये प्यारा संगीत।

0: पिता की रोक टोक कहीं न कहीं हमें हमेशा बेवजह लगती है, लेकिन वही रोक टोक हमें आगे चलकर अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहना सिखाती है और गलत रास्ते पर भटकने से बचाती है।
1: वो पिता ही होता है जो धूप में खड़े होकर कई बार घर बनवाता है ताकि परिवार को ठंडी छांव मिल सके। पिता के निर्णय कई बार कठोर होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अक्सर कड़े बड़े फैसले लेने के लिए जब कुछ त्याग और समर्पण का अवसर आता है तो पिता ही एक मुखिया के तौर पर अपना दायित्व भी निभाते हैं।
0: हर मुश्किल को वो आसान बना देते हैं, जब लड़खड़ाएं तो अपना हाथ थमा देते हैं, जब भीड़ में नजर ना आए कुछ तो कंधे पे उठा लेते हैं, जब किसी सवाल का ना मिलता हो जवाब तो जवाब बन खुद आ जाते हैं। पापा सुपर हीरो की तरह हर मुश्किल से बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, इसलिए एक थैंक यू तो बनता है पापा के नाम।
1: अब हमें दे इजाजत, अब आ गया है वक्त इस कार्यक्रम को यही विराम देने का। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और कार्यक्रम में कुछ और अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 में।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: You are listening 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित जैन, निदेशक जनगणना निदेशालय हरियाणा, आप सबसे मुखातिब हूँ। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे जनगणना 2027 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के बारे में बात करना चाहता हूँ। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ विकास की गति निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में सटीक और अद्यतन आंकड़े हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं बल्कि विकास की आधारशिला है। इसी के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। जनगणना 2027 कई मायनों में विशेष है। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही नागरिकों को स्व जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा में स्व गणना सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जिसके दौरान आप घर बैठे अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके पश्चात 1 मई 2026 से जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना का कार्य प्रारंभ होगा। इस दौरान प्रगणक आपकी जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर तक जाकर एकत्रित करेंगे। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जनगणना में दी गई आपकी सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और जो भी आप हमें बताएंगे वे सर्वर्स के ऊपर बहुत सिक्योरिटी के साथ रखे जाते हैं। कोई भी अथॉरिटी इस जानकारी को हमारे से नहीं ले सकती। देखिए, टोटल 33 क्वेश्चंस इस बार की जनगणना के अंदर हैं, तो यूनिकनेस इस बार हम पूछ रहे हैं कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो समय के साथ, बदलाव के साथ हमने ये सवाल भी ऐड किए हैं। हमारी हेल्पलाइन 1855, मैं रिपीट कर देता हूँ, 1855 वो खुल चुकी है। यदि हरियाणा के किसी नागरिक को कोई कष्ट है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन है 1855। आप अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से डायल करिए, ये सीधा हमारे कॉल सेंटर के अंदर कनेक्ट होगा और उनको स्वय जनगणना या ऑर्डिनरली कोई भी जनगणना से संबंधित सवाल है उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा।
2: मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी करें, सही और पूर्ण जानकारी दें और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग करें। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और विकसित हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
3: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
5: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। अंगूर में चूरड़ा और लाल धब्बा रोग का खतरा, नियंत्रण के लिए करें छिड़काव। नए कोपलों में काले भूरे रंग के कीड़े पहुंचाते हैं नुकसान, रोकथाम जरूरी। अंगूर के बागों में चूरड़ा का प्रकोप होने की आशंका है। यह अंगूर की फसल का प्रमुख कीट माना जाता है। इसके वयस्क कीट काले भूरे रंग के, बारीक और लंबे आकार के होते हैं, जबकि शिशु अवस्था के कीट छोटे छोटे और पीले भूरे रंग के होते हैं। ये मुख्य रूप से पत्तों की निचली सतह को कुरेद कर उनका रस चूसते हैं। शिशु अवस्था के कीट अधिक हानिकारक होते हैं और लगभग 9 से 20 दिन में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अधिक संक्रमण होने पर पत्ते मुड़कर पीले पड़ जाते हैं और अंततः सूखकर गिर जाते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर काम्बोज के अनुसार इस कीट की रोकथाम के लिए 150 मिलीलीटर फेनवेलरेट 20 ईसी या 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 ईसी साइथियान को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ बेलों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा कई बार बालों वाली सूंडियां भी अंगूरों की बेलों, पत्तों और फलों पर हमला कर देती हैं। ऐसी स्थिति में छोटी सूंडियों को पत्तों सहित तोड़कर एकत्रित करें और नष्ट कर दें। लाल धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए 0.2% वावस्टीन का छिड़काव करना भी प्रभावी रहता है। बेलों को सीधा बढ़ने के लिए सीढ़ियों या बांस का सहारा दें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग के अनुसार मुख्य तने और पत्तियों के बीच से निकलने वाली टहनियों को तोड़ते रहें। बेलों के सीधा बढ़ने के लिए सीढ़ियों या बांस का सहारा दें। 5 साल से ऊपर के फल दे रहे पौधों में 340 ग्राम यूरिया व 500 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डालें और गुड़ाई करके सिंचाई करें। अप्रैल के बाद सिंचाई हर सप्ताह करनी आवश्यक है। बीज रहित अंगूर की किस्मों से अधिक उपज लेने के लिए पूरी तरह फूल आ जाने की हालत में 20 पीपीए जीए व फल लगते समय 40 ppm यानी 40 मिलीग्राम लीटर का छिड़काव करें। संतरा माल्टा में फल गिरने की समस्या में गुड़ाई करके सिंचाई करें। संतरा माल्टा के पौधों में फल गिरने की समस्या आ सकती है। 7 साल से अधिक आयु के पौधों में 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा डालें, हल्की गुड़ाई करके सिंचाई करें। 1.5 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। 15 दिन बाद 1.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना व 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। संतरा व माल्टा में फल गिरने की समस्या को कम करने हेतु 6 ग्राम 2-4D 12 ग्राम ऑरियो फंजिन व 3 किलोग्राम जस्ता और 1.5 किलोग्राम चूना को 550 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर इस माह के आखिर में छिड़कें। बढ़ती गर्मी में नींबू के बागों की सुबह शाम सिंचाई जरूर करें। किसान वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर बढ़ते तापमान में पेड़ों से फल झड़ने से रोकें। अप्रैल और मई के महीनों में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इसका सीधा असर बागवानी फसलों पर दिखाई देने लगता है। नींबू के बागों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान पेड़ों पर फल विकसित हो रहे होते हैं। बढ़ती तपिश और खुश्क हवाओं के बीच पौधों को सही पोषण और नमी देना अनिवार्य है। ऐसे में यदि बागवान इन 2 महीनों में सही प्रबंधन अपनाते हैं तो न केवल फलों का झड़ना कम होगा बल्कि उनकी गुणवत्ता और पैदावार में भी शानदार बढ़ोतरी होगी। WHO डॉक्टर कमल सैनी ने बताया कि गर्मी के प्रभाव से बचाव और प्रबंधन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन महीनों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा पहुंचने लगता है जिससे पौधों में नमी की कमी हो सकती है। ऐसे में सही देखरेख जरूरी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाकर किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रबंधन के लिए उपयोगी सुझाव 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का घोल छिड़कें। नंबर 1 सिंचाई और नमी का ध्यान। बढ़ती गर्मी में मिट्टी जल्दी सूखती है इसलिए सिंचाई के अंतराल को कम करें। हल्की और नियमित सिंचाई पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है। पानी हमेशा सुबह जल्दी या शाम के वक्त ही दें। इसके साथ ही मल्चिंग, पेड़ों के तने के पास सूखी घास बिछाना जरूर करें ताकि जमीन की नमी लंबे समय तक बरकरार रहे। दो, पोषक तत्वों की प्रति एकड़ सटीक मात्रा। फलों के विकास और पौधों की मजबूती के लिए 200 लीटर पानी की घोल में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा मिलाकर छिड़काव करें। जिंक सल्फेट 700 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। मैग्नीशियम सल्फेट 700 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। यूरिया किसान 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ में घोल का छिड़काव करें। पोटेशियम नाइट्रेट 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़। मई की गर्मी में यह फलों को झुलसने से बचाता है। नंबर 3, फलों को झड़ने से रोकने के उपाय। कच्चे फलों की मजबूती के लिए NAA प्लानोफिक्स का प्रयोग करें। 1 एकड़ के लिए 40 से 50 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना सबसे प्रभावी रहता है। नंबर 4, कीट और फफूंद नियंत्रण। गर्मी के मौसम में सिट्रस, साइला और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 20 ग्राम ट्रिपेटोसाइक्लिन का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यह फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विशेष सावधानी, किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दवाई या पोषक तत्व का छिड़काव करने से पहले खेतों में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में स्प्रे करने से पौधों की पत्तियों पर बुरा असर पड़ सकता है। 7, उपरोक्त बताई गई विधियों का प्रयोग करते समय विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारत के धान की बढ़ेगी मांग। 7 राज्यों में ट्रेनिंग देगा बासमती निर्यात संस्थान। 89,000 किसानों को 15-15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बासमती धान की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने यूरोप के देशों में घटती मांग को बढ़ाने के लिए बिना पेस्टिसाइड का धान उगाने की योजना बनाई है। इसके लिए बासमती निर्यात संस्थान दिल्ली की तरफ से बिना पेस्टिसाइड के धान उगाने का 7 राज्यों के 89,448 किसानों को 15-15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के किसान शामिल होंगे। इसकी शुरुआत उन्नत प्रजातियों का बीज किसानों को देकर की गई। मुहिम के तहत 23 अप्रैल से अब तक 1700 क्विंटल बीज किसानों को वितरित किया गया है, जिसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1847 नामक किस्में शामिल हैं। ट्रेनिंग में मिट्टी का पोषण, रोगों से फसल का बचाव, रुपाई और जल प्रबंधन का तरीका, फसल के मित्र कीटों को बढ़ावा देना प्रमुख होगा।

ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में, तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: You are listening FM 90.0 MHz, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रति

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening FM 90.0 MHz, Radio Vitasta, Hamsafar Zindagi Ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
4: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आर.डी. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। कभी 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
4: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो।
0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अम्बाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Am zis, mi-a pui, măzuri, merge măzuri. Mi-a mai mereu. Ascultă, mi-ascultă să am cont, aș bătau, aș către chiar cu drumul.
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स सपने आपके जिम्मेदारी हमारी
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

चंचल शौक मासूम बेपनाह खूबसूरती की मिसाल, कुदरत की कारीगरी, एक चेहरा जो पहले पर्दे पर सिनेमा के चाहने वालों की पहली पसंद रही है। 50, 60 और 70 के दशकों में कोई और नहीं, सिर्फ नरगिस दत्त।

नरगिस हिंदी सिनेमा की एक महान अदाकारा थी, जिनका जन्म फातिमा राशिद के रूप में पहली जून सन 1929 को रावलपिंडी या कलकत्ता में हुआ था।

उन्होंने तलाश हक सन 1935 में शुरुआत की और एक मुकम्मल अदाकारा के तौर पर फिल्म तमन्ना सन 1942 से अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। सुनील दत्त से नरगिस की शादी हुई थी।

नरगिस ने कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म अंदाज, आवारा, श्री 420 और फिल्म मदर इंडिया शामिल है। आपकी जानकारी में इजाफा करना चाहेंगे, फिल्म मदर इंडिया के लिए नरगिस दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

नरगिस की आखिरी फिल्म रात और दिन सन 1967 यानी 1967 थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।

सुनील दत्त और नरगिस की मुलाकात फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई थी। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया था।

उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। कौमी एकता को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए, जिनमें बॉलीवुड के मेगास्टार संजय दत्त हैं। राज कपूर और नरगिस के बीच रोमांस की चर्चाएं खूब सुर्खियां बटोरती रहीं।

तक नरगिस ने फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, सभी के दिलों पे राज किया। सन 1952 में फिल्म बेवफा, अनहोनी, अंबर, धूम, आहा और सन 1956 में अंगारे जैसी फिल्मों ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

राज कपूर के साथ स्पेशल अपीयरेंस के तौर पे जागती रहो फिल्म में नरगिस नजर आई थी। ये नरगिस और राज कपूर की आखिरी फिल्म थी। नरगिस को सन 1980 से सन 1981 तक पार्लियामेंट के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। 51 साल की उम्र में नरगिस कैंसर की वजह से 3 मई सन 1981 को इस दुनिया से चल

नम्रता दत्त और प्रिया दत्त, उनकी दो बेटियां हैं। लगभग 51 फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया। फिल्म अदालत, लाजवंती, जागती रहो, घर संसार, अंगारे, पापी, परदेसी, यादें, बरसात, आग, अंदाज, दीदार, काला बाजार, मिस इंडिया, बाबुल, मेला, अंबर और जोगम जैसी कामयाब फिल्मों में नरगिस दत्त ने काम किया और एक खूबसूरत, मजबूत अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही।

0: पेश है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6। पेश करेंगे आरजे किरणी, रिकॉर्ड किया राहुल लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सरगम। सभी दोस्तों को किरणी का नमस्कार। प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए हुए गाने के साथ, जिसको म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और फिल्म का नाम है अवतार।

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको अपने संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है लोफर और इस गाने को अपनी आवाज दी है आशा भोसले ने।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म सच्चाई का गाना, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और जिसे अपने संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और अपनी खूबसूरत आवाजों में गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

अब पेश है मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम। आप पेश है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत दिया हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, फिल्म बगावत से, और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम का अगला गाना है खयाम के म्यूजिक दिया हुआ, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है शंकर जयकिशन का संगीत दिया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं जलाल मुरादाबादी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, और फिल्म का नाम है बरसात।

अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी और मुकेश के गाए हुए गाने से, जिसका म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और जिसके बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

इस गाने के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिए। नंबर है 7056413010। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 6, पेश किया आरजे गिरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल लल्लियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: देवानंद 35 रुपए लेकर गुरदासपुर से बॉम्बे फिल्मों के लिए भागे थे। कड़े संघर्ष के बाद उन्हें फिल्मों में अपनी राह मिली, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, संगीत में। उन्होंने 65 सालों में नए नए तजुर्बे किए। एस टी बर्मन का संगीत, मजरू के गीत और पर्दे पर देवानंद। देवानंद की हर फिल्म का गीत संगीत परले दर्जे की समझ अपने आप में समेटे होता था। किशोर ने फिल्म जिद्दी में देवानंद के लिए पहली बार गाया। गीत के बोल थे, मरने की दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे।
1: गाता रहे
0: बस सारी जिंदगी देवानंद और किशोर।

दोस्ती निभाने की कला देवानंद और गुरुदत्त ने उदाहरण बन फिल्मी सनत को सौंपी। एक ने वायदा किया कि गुरुदत्त, अगर मैं फिल्मों में कामयाब रहा तो मेरी पहली फिल्म तुम डायरेक्ट करोगे, और अगर तुम सफल होगे तो अपनी फिल्म में हीरो मुझे ही बनाओगे।

फिल्म बाजी और सीआईडी में श्रेय और देवानंद एक स्टाइल बन गए। दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, बलराज साहनी और देवानंद के एक्टिंग में अपने अपने स्टाइल थे, मगर इन सब में अगर स्टाइलाइज्ड कोई हीरो थे तो वो थे देवानंद। 60 और 65 के दशक में देवानंद एक नायाब छवि के हीरो थे। काला कोट, काली पेंट, सिर पर अपनी तरह का हैट, कलाई पर रुमाल, दाईं ओर से टूटा हुआ एक दांत स्टाइल बन गया था।

0: देव साहब को 1959 यानी 1959 में कालापानी के लिए और 1967 यानी 1967 में गाइड के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया।
1: देखो रूठा ना करो।
0: इन 1991 में देवानंद को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। सन 2000 में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से

सिने दर्शकों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। लेकिन फिल्मों के जरिए देवानंद को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

बोलती फिल्मों के शुरुआती दौर में लोग केएल सहगल, केसी डे, जोहराबाई अंबाले वाली, अमीर भाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम की ही आवाज सुनना पसंद करते थे। लेकिन जब नए सुरीले गायकों ने सुर बिखेरे तो उनका जादू भी सिर चढ़कर बोला। सन 1941 के बाद इस दौर में नूर जहां सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गायिका थी। ए आर कारदार ने सुरैया को फिल्म शारदा में पहला गीत गाने का मौका फराहम किया। संगीतकार श्याम सुंदर ने गांव की गोरी में रफी को पहली बार गीत गाने का मौका दिया और एक कोरस के जरिए इस फिल्म में पेश किया। संगीतकार अनिल बिस्वास को लगा कि मुकेश की आवाज कमाल कर सकती है, तो उन्होंने फिल्म पहली नजर में उनसे गीत गवाया। लता मंगेशकर और आशा भोसले भी गीत गाने लगी थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ मराठी फिल्मों और कोरस में गीत गाए थे। कुल मिलाकर यही वो समय था जब फिल्मों में गीत संगीत की सुरीली दुनिया सजी जो

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं और अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:20। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। सूरज ढल चुका है और वक्त हो चला है आज के इस बेहद खूबसूरत सफर को यही विराम देने का। आज का दिन हम सबके लिए बहुत भावुक और खास रहा, क्योंकि आज हमने मनाया मदर्स डे। वैसे तो सच कहूं दोस्तों, मां के लिए कोई एक दिन मुकर्रर करना मुमकिन नहीं है। कैलेंडर की हर तारीख, घड़ी की हर सुई और हमारे वजूद का हर एक कतरा उसी मां की देन है। सच तो यही है कि हर दिन मां का होता है, क्योंकि मां के बिना हमारा कोई दिन शुरू हो ही नहीं सकता। एक एहसास जो कभी मरता नहीं, वो एहसास है मां का। श्रोताओं, अक्सर लोग पूछते हैं कि मां क्या है। मां वो साया है जो कड़ी धूप में हमें ठंडक देती है। मां वो दुआ है जो हर मुसीबत के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कहते हैं कि जब मां इस दुनिया से रुखसत होती है तो वो अपना जिस्म ले जाती है, अपनी रूह ले जाती है, लेकिन अपना आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए दहलीज पर ही छोड़ जाती है। वो आशीर्वाद जो घर की चौखट पर किसी सुरक्षा कवच की तरह हमेशा बना रहता है। मां चाहे पास हो या प्रभु के पास, उसकी ममता की खुशबू घर के कोने से कभी नहीं जाती। उसकी डांट में फिक्र थी, उसके हाथों के स्वाद में अमृत था, और उसकी खामोशी में भी हमारे लिए हजारों प्रार्थनाएं छिपी थी। आज उन सभी माताओं को हमारा नमन, जो हमारे बीच हैं, और उन्हें भी हमारा सलाम जो ऊपर सितारों के बीच से ही हमें देख रही हैं। मां बनाने के लिए, हमें संभालने के लिए और निस्वार्थ प्रेम करने के लिए आपका शुक्रिया, अनंत शुक्रिया। मैं अपनी मां का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको नमन करता हूं। मेरी मदर इन लॉ, वो भी मेरी मां ही थी, हमें बहुत सारा प्यार करते थे, और उनको भी हम आप सभी श्रोताओं की ओर से भी नमन करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हम आपके सामने आज कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, यह सारा श्रेय मां को जाता है। मां के लिए ये कुछ खामोशी के पल। उम्मीद है आज ये विशेष प्रसारण आपके दिलों को छू गया होगा। अब समय है विदा लेने का। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के प्रोग्राम्स को सफल बनाने के लिए आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया, जो आप हमारे साथ हर कार्यक्रम में, हर आवाज में रहते हैं। हर दिन की तरह कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए लाया हूं, और आज ये पंक्तियां सभी माताओं को समर्पित है। रूह के रिश्तों में ये कैसी गहराई होती है, रूह के रिश्तों में ये कैसी गहराई होती है, चोट हमें लगती है और दर्द मां को होता है। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। रूह के रिश्तों में ये कैसी गहराई होती है, चोट हमें लगती है और दर्द मां को होता है। वो भले ही चली जाए इस जहां से दूर कहीं, वो भले ही चली जाए इस जहां से दूर कहीं, पर उसकी दुआ सदा दहलीज पर खड़ी होती है, पर उसकी दुआ सदा दहलीज पर खड़ी होती है। मैं अपने सभी श्रोताओं को, उनके परिवारजनों को, अपने परिवारजनों को हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपके पास मां है तो एकदम जाके
प्यार की जप्फी लगाइए उनके साथ, और अगर वो प्रभु के पास गई है तो अपने मन में उनको याद कीजिए और उन्हें नमन कीजिए और कहिए कि आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी के साथ दोस्तों शुभ रात्रि, अपना और अपनी मां का ख्याल रखिए, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मैं भारत सोपोरी आपसे चाहूंगा इजाजत। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। उम्मीद करूंगा कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार देंगे, और आज सभी को हैप्पी मदर्स डे कहेंगे। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय मां, जय भारत, वंदे मातरम।